0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना।

0: है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.9 MHz न्यूज ऑन AIR ऐप वर आपण ट्यून केलं आकाशवाणी बीड केंद्र। हे आहे आमची प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सकाळच्या 6:05 झाली आहेत। मंगल प्रभात। भक्ती संगीताचा कार्यक्रम प्रसारित करत आहोत। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया वैभवी शेटे यांच्या स्वरात श्री दत्तात्रय स्तोत्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे।

0: के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी नाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्ग दर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक

0: मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आलीपुर में जीडी कन्ना रोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: साणन और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणन का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। साणन में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
4: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
2: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद

0: पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate semi

लैला मजनू इस फिल्म का गीत अब सुनिए अरिजीत सिंह और जोनीता गांधी की आवाजों में। इरशाद कामिल की रचना है और निलाद्री कुमार ने इसे संगीत से सजाया है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। साथियों, हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का ही वो दिन है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मरीजों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सही दवा, सही उपचार, स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर संवाद रोगी सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हर मरीज का महत्वपूर्ण अधिकार है। और आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। ड्रीम गर्ल इस फिल्म से मीत ब्रोज ने इसे गाया है, साथ दिया है अल्तमश फरीदी ने, शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, मीत ब्रोज का संगीत।

0: मलंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना सचेत टंडन की आवाज में। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा था, द फ्यूजन प्रोजेक्ट म्यूजिक।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती से, और अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है, जब हसरत जफरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो

मशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए हसरत जयपुरी।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूट था।

0: ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न व इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।
1: तेरी

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गाने लिखे।

दोस्तों, हसरत जैपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तुरी बाजे पायलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अम्बेडकर

0: वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज़्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलन, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की तायद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,
1: तेरी

दोस्तों तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: तुम मुझे।
1: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब शो को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गान।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: आप सुन रहे हैं
3: श्रोते हो, विविध भारती राष्ट्रीय सेवेचं प्रसारण आपण ऐकत होता। हे सर्व कार्यक्रम सहक्षेपित करण्यात आले FM 102.9 MHz न्यूज ऑन AIR ॲप वर आकाशवाणी बीर केंद्र। सकाळचे 10 वाजलेत, प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम एके फिल्म। आणि आजच्या एके फिल्म कार्यक्रमात चित्रपट

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर में आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट या इबारत पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उस पर ही छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे। और आज की इबारत और टेक्स्ट जो है वो हम आपको बता देते हैं। इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं, लेकिन आते ही हमें मिल जाता है पूरा परिवार। फिर भी कभी हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ। यारों की तो बात निराली है, उनके साथ हर गम की शाम भी बन जाती दिवाली है। लेकिन हम सफर के आते ही हम भूल जाते हैं सारा जहान। दोस्त यार भी देते हैं लानत और करते हैं प्यार से तौबा, लेकिन किसी अजनबी हसीना से मुलाकात होते ही वो भी हो जाते हैं प्यार के शिकार। तो आपका इस बारे में क्या है विचार? क्या आप हैं यारों के यार या आप भी हैं प्यार के शिकार? ये

हमारी आज की इबारत है और इसमें से बहुत से शब्द हमारे साथियों ने चुन भी लिए हैं, गीत भी हमें बता दिए हैं। तो कौन कौन से गीत आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट में से मैच होने वाले हैं ये तो आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे ही। साथ ही आज यारों दोस्तों की बातें होंगी, हम सफर जीवन साथी की बातें भी होंगी और क्या दोस्तों ने कभी आपको ताने उल्हाने दिए हैं और दिए हैं तो क्यों दिए हैं ये आप हमें बताइएगा। और ये भी बताइए कि दोस्तों के दोस्त आप हैं या हैं आप सिर्फ अपने ही दोस्त, और स्कूल के दोस्तों से संपर्क है, कॉलेज के दोस्तों से संपर्क है या हर बार आप नए दोस्त बनाते चलते हैं। तो ये सारी बातें करते हुए चलेंगे आज के इस कार्यक्रम में आगे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि दुनिया में इंसान अकेला आता है लेकिन परिवार, यार और दोस्त उसके जीवन को रिश्तों और अपनेपन से भर देते हैं। दोस्ती में गम भी हल्का हो जाता है और हर पल खुशनुमा बन जाता है। वहीं हमसफर की मुलाकात जीवन में प्यार और मोहब्बत के नए रंग भर देती है। अजनबी से हुई

हो जाता है और हर पल खुशनुमा बन जाता है। वहीं हमसफर की मुलाकात जीवन में प्यार और मोहब्बत के नए रंग भर देती है। अजनबी से हुई एक मुलाकात कब दिल को प्यार का शिकार बना दे पता ही नहीं चलता। यही दोस्ती, यारी, मुलाकात और मोहब्बत के खूबसूरत एहसास आज के इस कार्यक्रम में भावनाओं से भर देंगे। और हमारे साथी कह रहे हैं, प्यार और यार बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं अपितु मार्मिक, सहज और सरल विषय हैं जिससे सभी अनुस्यूत हैं, लेकिन समुचित निर्णय तक पहुंचते पहुंचते रह जा रहे हैं, क्योंकि प्यार जहां प्रकृति और पुरुष के बीच अनुस्यूत होते हुए भी अपने सृजनशीलता में सच्चिदानंद युक्त है, वहीं यार अपने यारानेपन से इस योजना को चरितार्थ करते रहने की भावना है। तो अक्सर लोग सृजन को समझ नहीं पाते और अज्ञानता के परिणाम स्वरूप सृजनता को ही अपना मानकर मोहपाश में बनते हैं, फिर वो विनाश के प्रति अग्रसर होते हैं। तभी तो कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, प्यार में आकर्षण तो है किंतु आकर्षण यार के रूप लावण्य पर स्वयं के निछावर कर त्याग और समर्पण की मिसाल बनने में ही निहित है, फिर ये परिस्थिति किसी प्रेयसी के प्रति हो या मित्रता के प्रति, ऐसा इन्होंने कहा है। तो चलिए कार्यक्रम में और बातें पढ़ें और कमेंट्स आपके पढ़ें, उससे पहले कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और क्या ये गीत आपके लिस्ट में शामिल है।

और परिवार में सुरक्षा, जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों के सुरों से मिलकर बनती है। बहुत ही अच्छी बात आपने लिखी। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर यारों का यार भी बना रहता है और वक्त आने पर खुशी खुशी प्यार का शिकार भी हो जाता है। जिंदगी का असली मजा यही है कि यार महफिल को जिंदा रखें और हम सफर खामोशियों को भी हसीन बना दे। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अकेले आना हमारी मजबूरी है, पर अकेले रह ना पाना हमारी खूबसूरती है। परिवार हमें पहचान देता है तो यार हमें उस पहचान पर हंसना सिखाते हैं। उनके साथ चाय की प्याली भी महफिल बन जाती है और गम की शाम भी दिवाली। और वो अजनबी हसीना वाला जादू भी कुछ अलग से नहीं होता। दिल अगर जिंदा है तो किसी न किसी का शिकार तो होता ही है। इसलिए मेरा विचार है कि मैं यारों का यार रहकर ही प्यार का सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि यारी हमें इंसान बनाती है और प्यार हमें किसी एक पर स्वयं को समर्पित रहना सिखाता है। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको, जैसे इस गीत में कहा गया था कि बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं, तो आपको किस तरह से दोस्त मिले, क्या काफी मुश्किलें हुई या बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं दोस्ती, ये तो हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बता सकते हैं।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आपने सुना और फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बता रहे हैं अलग अलग बातें। हमारे एक साथी कहती हैं कि आज की भारत रिश्तों के बदलते रंगों की कहानी है। इंसान परिवार के बीच पलता है, दोस्तों की महफिल में खुशियां बांटता है और जब प्यार दस्तक देता है तो वही दिल किसी खास हमसफर का हो जाता है। दोस्ती में बेफिक्री है, प्यार में अपना

बात एक रात की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सवाल का सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती वो रिश्ता है जहां बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे का होना ही दिल को सुकून दे जाता है। और जब दोस्ती में प्यार की मिठास घुल जाए तो रिश्ता और भी अपना सा लगने लगता है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं दिल से बनते और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही। दोस्ती का रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। हमारे एक साथी और

वो कह रही हैं, दुनिया में हम अकेले आते हैं, परिवार मिलता है, फिर नाते रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्ती यारी बनती है, मिलने वाले कुछ अजनबी हमारे सबसे करीबी और परिवार जैसे बन जाते हैं। सच्चा दोस्त सुख दुख में साथ निभाता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए हम सफर बन जाते हैं तो कुछ प्रेम और स्मृतियों के रूप में हमेशा दिल में रहते हैं। बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं और हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती के बारे में कह रहे हैं कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो तन्हाई और महफिल के बीच ताउम्र झूलता रहता है। जन्म के साथ जो परिवार मिलता है वो बुनियाद बनता है, लेकिन इंसान की असली पहचान और आजादी उसके दोस्तों के बीच खुलकर सामने आती है। दोस्त वाकई हर गम की शाम को दिवाली बनाने का हुनर रखते हैं, वहां औपचारिकताएं नहीं बेतकल्लुफी और सच्चा सहारा होता है। लेकिन दोस्त अगर आपको छेड़ने पर आ जाए या उलाहने देने लगे तो कुछ अलग ही हाल होता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें बताइए, क्या कभी आपको दोस्तों से ऐसे ताने उलाहने मिले हैं? कौन सी फिल्म का गीत है ये भी बताइएगा।

0: तौबा।
1: फिर सुबह होगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस तरह के ताने उलाने क्या आपको आपके दोस्त देते हैं, कभी मिला है ऐसा ताना हमें भी बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मानव जीवन की यात्रा एक कोरे कागज की तरह शुरू होती है। हर इंसान इस दुनिया में अकेले आता है, नितांत निश्चल और शांत। जन्म लेते ही परिवार मिलता है, जहां निस्वार्थ और सुरक्षात्मक प्रेम मिलता है। वो प्रेम की ऐसी बुनियाद है जो इस विश्वास को परिभाषित करती है कि इस अजनबी दुनिया में हम अकेले नहीं है। वक्त आगे बढ़ता है, बचपन से युवावस्था में कदम रखते ही यारी दोस्ती से जुड़कर प्रेम की पहचान

परेशान होती है, फिर आजादी का दौर अलड़पन रहता है। यहाँ जिंदगी के सफर में कभी कभी हम अकेलेपन की जरूरत भी होती है। ये कोई सजा नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम को समझने के लिए आवश्यक है। और जब हम थोड़े थोड़े परिपक्व होते हैं तो जिंदगी में हम सफर का आना, प्रेम और जिंदगी को नए रिश्तों से जोड़ना एक ऐसी भावना को जागृत कर देता है जिससे जिंदगी करीब करीब मुकम्मल हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यही है कि आदमी दुनिया में अकेला आता है और रिश्तों में रहता है, फिर सच्चाई समझ लेता है, उसके बाद देखा है अकेले में जो सुकून है या यारों के साथ जो सुकून है कुछ भी ऐसा ही, और अंत में अकेला चला जाता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम किसी प्यार के शिकार हैं ना किसी राह में लाचार हैं, हम तो बस दिलदार तरानों और खूबसूरत नगमों के यार हैं। जिंदगी के हर मोड़ को मुस्कुराहट से जीना और गीतों की महफिल से खुशियां बांटना ही अपना अंदाज है। शिकारी हो या शिकार, हम तो बस दोस्ती और मोहब्बत के इस हसीन सफर के हमराही हैं। क्या कहने आपकी बात के। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज जीवन के सफर में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, हर मोड़ पर बदलते हैं। इस इबारत में भी बदलते रिश्तों की ओर इशारा है। शुरू में परिवार से जुड़ते हैं, फिर यार दोस्त हमारे साथी बन जाते हैं, फिर कभी कभी हमारा मन अकेले रहने की जिद करता है, कोई हसीना अचानक हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम रिश्तेदार दोस्त सबको भूल कर उस हसीना के दीवाने हो जाते हैं, दुनियादारी तक भूल जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। हमारे और एक साथी कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि दोस्त अपनी जगह होती है दोस्ती, और प्यार अपनी जगह होता है, और परिवार एक तरफ होता है, लेकिन आज के दौर में अपने प्यार को ज्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे एक और साथी का कहना है, क्या ये हम बताते हैं आपको। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है सच्चाई, परिवार सबसे बड़ी दौलत और सच्चाई है परिवार, एक खुशहाल जीवन और इस जीवन में कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सब रिश्ते अपनी अहमियत रखते हैं, अकेले आने के बाद हर रिश्ता हमारे जीवन में अपने आप ही बनने लगता है। बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास से निभाया जाए, न कि झूठ धोखा लालच बेईमानी से निभाते जाएं, क्योंकि इसका परिणाम ही जिंदगी में जहर घोलने लगता है और जिंदगी को नरक कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े ही गंभीर भी बातें आ रही है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी हो जाए तो हमें बताइए कुछ कि क्या आप और आपके दोस्त जब मिलते हैं तो कुछ ताने बुलाने का दौर चलता है या नहीं, और दोस्ती पर कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें ये बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपके हमसफर के आने के बाद आप वाकई दोस्तों से दूर हो गए या ऐसा सिर्फ कहा जाता है। ये सारी बातें तो आप बताएंगे ही, साथ ही हमें ये भी बताइए कि जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है, संगीत किसका है।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस गीत में था और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी सही बताया। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं रोज फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पढ़ने आता हूं और सोचता हूं कि आज यूनुस जी आएंगे, मगर अफसोस मैं निराश हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि आप सब लोग कार्यक्रम अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इंतजार बहुत लंबा हो गया है। भाई आपकी ये इंतजार जो है जल्द ही खत्म होगा, ऐसे हमारा मानना है। हमारे साथी कह रहे हैं कि दोस्ती में आदमी बेतकल्लुफ रहता है, हर बंधन से मुक्त, जिसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब की दीवार नहीं होती, होता है तो बस आपसी प्यार और इतना सा लिहाज कि जब दोस्त ये दोस्त कभी रूठ ना जाए। पुरुष के मामले में यही दोस्त हम सफर की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये बहुत फोन करता है, इसे और काम नहीं क्या, ये तुम्हारे ऑफिस में है क्या, वगैरह वगैरह। इतने पर भी अच्छे दोस्त बुरा नहीं मानते और दोस्ती बनी रहती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संसार के सफर पर मानव आने के बाद पहली बार परिवार से मिलता है, फिर सहपाठी, स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं अच्छे, हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, फिर अचानक जीवन में अजनबी के आने से उनके साथ फिर एक नया परिवार बना लेते हैं। परिवार और दोस्तों दोनों का साथ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों का साथ हमें कुछ पलों के लिए खिलखिलाने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है। परिवार दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर जिए और खूबसूरत पल बिताएं, तनाव मुक्त रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत यारी दोस्ती की ज्यादा बातें करती नजर आ रही है, कभी समुंदर तो कभी आसमान है दोस्ती, जैसे आजाद परिंदों की जान है दोस्ती, कभी मुसीबत में फंसे दोस्त को भी बचा लेती है दोस्ती, खुशियों का पिटारा है दोस्ती, प्यार भरे रिश्तों का नाम है दोस्ती। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रिश्तों की दुनिया में दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी के खूबसूरत रंग है। यारों के साथ हंसी बेफिक्री होती है और प्यार के साथ दिल कुछ ज्यादा ही खामोश होकर धड़कने लगता है। दोस्त चाहे जितना छेड़ें, हम सफर आए तो दुनिया सिमट जाती है और कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान उस सिमटी दुनिया में फिर से हलचल मचा देती है। शायद जिंदगी भी इसी उलझन का नाम है, कभी यारी के नाम, कभी प्यार के नाम। तो बस इस बात पर एक गीत याद आ गया जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। ये बताइएगा कि ये गीत किसकी आवाज में है।

0: महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेलं उपोषण मनोज जरांगे यांनी मागे घेतलं असून त्यांच्या निर्णयाचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केलं आहे. ते आज छत्रपती संभाजीनगर इथं मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रमात बोलत होते. जरांगे यांच्या उर्वरित मागण्यांबाबत कायदेशीर बाबी यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. हिंदी पखवाड्यानिमित्त देशभरात कालपासून हिंदी भाषेच्या प्रोत्साहनार्थ विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आकाशवाणी मुंबईच्या नवीन प्रसारण भवनात तसंच केंद्रीय विक्रय एकांशातर्फे काल हिंदी दिवस आणि हिंदी पखवाडा कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं. प्रसिद्ध अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघांमध्ये T20 मालिकेतला तिसरा आणि अंतिम सामना आज नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर होणार आहे. सामना संध्याकाळी 7:30 सुरू होईल. 3 सामन्यांच्या या मालिकेत भारतानं 2-0 अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. सेमिकॉन 2026 परिषदेचं प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन. देशव्यापी सेवा संकल्प अभियानाला प्रारंभ. 79व्या हैदराबाद मुक्ती दिनानिमित्त तेलंगणात आणि महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यात विविध कार्यक्रम. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरात 2023 नंतर प्रथमच वाढ आणि इंधनावरच्या विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया 3:00 आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: हमारे और साथी हैं वो कह रहे कि दोस्ती पर आधारित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्ती उन्हें अच्छी लगी. खुदगर्ज याराना और दोस्ती का नाम भी हमारे साथी ने लिखा. वहीं हमारे साथी कह रहे कि व्हाट्सएप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक कॉलेज फ्रेंड का भी ग्रुप है. समय समय पर छोटी छोटी टूर्स भी हम करते रहते हैं, साथ में मिलते रहते हैं. हमारे एक और साथी कह रहे कि दिए जलते हैं तो अंधेरों में उजाला भर जाता है, मन में उम्मीद और जीवन में नई रोशनी आती. एक छोटा सा दीपक भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए. एक साथी कह रही कि प्रेम ही ऐसी चीज है जो दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग थलग कर देता है. हम योजना तो बहुत बनाते हैं मगर अंत में वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है. जन्म लेते ही हमें मिलता है प्यारा परिवार, फिर यार दोस्त, फिर एक प्यारा सा हमसफर. ये जीवन के क्रय हैं. एक दिन आपको समझ आ जाता है कि हम जो भी पात्र जी रहे हैं वो भी एक कहानी है और कहानी के लेखक है ईश्वर. तो इस जिंदगी में जो रिश्ता मिले उसका शुक्राना कीजिए और जो ना मिला उसके लिए उदास मत होइए. जो हो रहा है एक पटकथा का हिस्सा है और आप एक छोटे से रोल में हैं, तो बस उस रोल को निभाते रहिए और खुश रहिए. नमक हराम फिल्म का जो गीत हमने सुनाया दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बहुत से साथियों ने कहा कि उनकी लिस्ट में वो गीत शामिल था. और भी हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके लिस्ट के 90वें नंबर का जो गीत था वो चल चुका है. एक और साथी कह रहे हैं कि प्यार यार और परिवार में छुपा है सारे संसार का सार. संबंधों की सामंजस्यता के अभाव में इंसान एकाकी और अकेलेपन का शिकार हो जाता है. अभिरुचि के समानांतर भाव की तलाश में इंसान कभी यार, कभी प्यार तो कभी परिवार में जीवन गुजार देता है. अंततो गत्वा उत्तरार्ध में परिवार से ही संपूर्ण संतुष्टि मिलती है. ये हमारे साथी का कहना है. और एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम से आज तक दोस्ती चल रही है. 60 साल से मोबाइल पर लगातार हम बातें कर रहे हैं. भाई इतना समय तो शायद मोबाइल को आए हुए भी नहीं हुआ, लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार है, ये सबसे अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय, संजोग और स्थल के बदलाव से नए दोस्त तो बनने स्वाभाविक हैं और उनमें से कई सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं. पर मैं पुराने और संयोगों के कारण छूटे पुराने दोस्तों को भूला नहीं हूँ. कल की मन में और कभी कभी सपनों में भी याद आते हैं. कुछ इस दुनिया से चले गए पर मेरे सपनों में तो कभी कभी आते जाते रहते हैं. ये आपका लगाव ही है अपने दोस्तों के साथ जो आपको वो नजर आते रहते हैं. और इस तरह की दोस्ती तो बिल्कुल बनी रहे तो अच्छा है. हमारे एक और साथी हैं वो बता रहे हैं कुछ बात, लेकिन ये बात हम आपको बताएंगे एक गीत के बाद. तो ये गीत हमने चुना है एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम आपको हमें बताना है. और ये भी बताइएगा कि इस गीत को लिखा किसने.

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत। हमारे साथियों ने कुछ जवाब दिया हो तो हम तक पहुंचा नहीं है अब तक। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल, कॉकटेल 2, इन फिल्मों में मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है और उनके जो गेट टुगेदर होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि 100 से 150 लोग मिलते हैं, 1978 का उनका बैच है और बड़ा ही आनंद उन्हें आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संसार में यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है, हर दुख सुख में वो बिना बुलाए हाजिर रहेगा, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि यारों के साथ दिमाग फ्रेश होता है और प्यार के साथ दिमाग का दही होता है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से मित्रता हो गई मेरी सबसे अच्छी मित्र से, बस कक्षा में आते ही हम दोनों तुरंत ही बातें करने लगी, यूं तो आगे पीछे की सीट थी फिर भी दिन भर बातें करती थी, अगली कक्षा में हम दोनों एक ही सीट पर बैठने लगे, फिर हम अलग हो गए क्योंकि हम नए घर में आ गए। तो अब भी आपकी उनसे बातें होती हैं या नहीं ये हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज भी एक कॉलेज मित्र के यहाँ हम चार मित्र जा रहे हैं, वो उद्योगपति है और विश्वकर्मा पूजा पर हमें आमंत्रित किया है, तो यारी दोस्ती में मूल्य उत्तरार्ध में ही यारी दोस्ती का मूल्य उत्तरार्ध में ही महसूस होता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं पशु पक्षी से करो, वो आपको दोगुना देंगे, यानी कि दोगुना प्रेम देंगे। हमारे एक और साथी कहने कि दोस्त कम बनाते हैं पर जिसे बना लेते हैं उसे कभी नहीं भूलते, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, बात सबसे करते हैं पर दोस्ती सबसे नहीं, पर जो दोस्त

हैं वो बड़े ही प्यारे हैं। इतने कि अभी जब हमारे घर का काम चल रहा था तो उन्होंने कई बार हमारे लिए खाना भी बनाया और साथ आकर भी खाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिसे परिवार के साथ इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं। और तो और स्कूल के भी कुछ दोस्त फिर से मिल गए हैं, पर हाँ बस दुख उस बात का है कि जिसका सबसे ज्यादा जरूरी वही साथ छोड़कर चले गए। ये तो खुद नहीं भगवान ने बुला लिया, शायद उन्हें कुछ अच्छे इंसानों की जरूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भाई अब जीवन की रीत है यही हम कह सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। वही हमारे साथी ने जो अपनी दोस्त से पहली पहली मुलाकात याद की, उस पर एक गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसका, फिल्म का नाम भी।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं, मैं कभी अकेली नहीं रह पाई, पैदा होने के बाद हमेशा बहुत बड़े परिवार में रही, माता पिता दोनों का परिवार बड़ा और संयुक्त था, शादी भी बड़े घर में हुई, 3 बच्चे उनकी शादी के बाद परिवार, अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी तौबा तुम्हारे ये इशारे, इस गीत में से कौन सा शब्द इबारत में है कृपया बताएं। तो हम आपको बता दें कि तौबा शब्द ही हमने इबारत में शामिल किया हुआ है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, ये गीत उन्होंने बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे तय है, मगर मोबाइल ने तो हमें अभी से अकेला कर दिया। वही हमने एक साथी को कहा था, जो वो कह रहे थे कि 60 साल से वो बातें कर रही हैं फोन पर, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल पर बातें होती हैं, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल नहीं आया था, और उन्होंने कहा कि वे लैंडलाइन तो आ गया था। तो बिल्कुल सही बात, हम अपनी बात लेते हैं वापस, और अच्छा है आप अपने दोस्तों से इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए दोस्तों का जीवन में आना एक नई ताजगी और नए दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो दिल का जुड़ाव होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए रिश्ते जहाँ जिंदगी को नया रंग देते हैं, पुराने रिश्ते हमारी जड़ों और पहचान को संभाले रखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि अगर सच्ची भावना तो कभी भी दोस्ती टूटती नहीं है न रिश्ते, तो इसलिए मन में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सारे दोस्त स्कूल कॉलेज के मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज वो दोस्त गुम हैं। हजारों बार फोन फेसबुक पर तलाश करते पर निराशा हाथ लगती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बिछड़े हुए दोस्त से मिलना यादगार होता है, ऐसा इनके साथ हुआ। 8वीं में सांची में थे, पिता का ट्रांसफर भोपाल हो गया, लेकिन 2025 में जब सांची गए तो कई दोस्तों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें से एक मिला और पुरानी बातें हुई, बड़ा आनंद आया। और अब आपको आनंद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी पैसे पर। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब पैसे को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाने लगता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज अनेक लोग सफलता का मापदंड केवल धन संपत्ति को मानने लगे हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र, ज्ञान या संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी और आलीशान घर से आंका जाने लगा है। इस सोच ने समाज में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पैसे के पीछे अंधी दौड़ में कई लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और अपने रिश्तों की उपेक्षा कर देते हैं। दिन रात धन कमाने की चिंता में वे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों को भी महत्व नहीं देते। उनकी नज़र में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

सेकंड रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट।

अत्यधिक धन लालसा कभी कभी व्यक्ति को अनैतिक रास्तों की ओर भी ले जाती है। गलत काम के पीछे अक्सर अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह ही होती है। ऐसा धन क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति और आत्मसम्मान नहीं दे सकता। ये भी सत्य है कि पैसा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाया गया धन सम्मान का विषय है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा जीवन का उद्देश्य बन जाता है, साधन नहीं। वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्तों, संतोष, नैतिक मूल्यों और मानवता में भी होती है। पैसा जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन खुशियों, विश्वास और अपनत्व का स्थान नहीं ले सकता। पैसे को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना वह वास्तव में योग्य है। पैसा जीवन का आवश्यक साधन है, परंतु जीवन का सर्वोच्च मूल्य नहीं। धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन अपने संस्कारों, रिश्तों और मानवीय मूल्यों को उससे कभी कम न आंके। पैसे से हम भले ही दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, पर पैसे से प्यार, अपनापन, स्नेह नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे का हमें गुरूर भी नहीं करना।

जब पैसे का दुरुपयोग होने लगता है तब वही पैसा अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए धन कमाना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका सही और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना। आज के समय में अनेक लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा दिखावे, फैशन, अनावश्यक खरीदारी, महंगे गैजेट्स, पार्टियों और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। कई बार लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन और मानसिक तनाव को जन्म देती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी पैसे के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। दूसरों की जीवन शैली देख

देखकर लोग बिना आवश्यकता के नई नई वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कई बार वस्तुएं केवल इसलिए खरीदी जाती है कि वे प्रचलन में हैं, जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है। ला ला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चीप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान।

0: तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: The pillar six is about talent.
2: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
4: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
6: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में शांति, खुशहाली, समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खा वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो। कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
5: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहां की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
7: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना

0: सेना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
3: Draining the swamp that provided an
4: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर

0: इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में मुकेश की हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।

0: चली।
1: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की,

0: गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, छेड़ा। मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर, सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं हसला जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, झुक गया आसमान फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज पगला कहीं का फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर प्रसन्नता हमेशा होती है, और जब प्रसन्नता रहती है मैडम तो ममता जी तो मन कहीं कुछ ऐसा थिरकने को लगता है ना, नहीं भी आता हो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को नृत्य करना है, लेकिन पैर की थिरकन एक अपने आप चल
1: थिरकने से कहा जाता है कि डांस एक स्ट्रेस बस्टर होता है, आपके बहुत सारे तनाव मन के घुल जाते हैं कहीं, तो अगर आपको नृत्य आता है किसी भी प्रकार का तो आप हमें लगता है कि बहुत खुशहाल प्राणी कहलाएंगे
0: जी,
1: क्योंकि जरा भी मन उदास होता है, दुखी होता है तो आप नृत्य करने लगे, देखिए आप सब कुछ भूल जाते हैं,
0: बात बिल्कुल सही
1: है, या फिर गाना गाने लगे, तो संगीत में ताकत है, लेकिन नृत्य तो ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप सब कुछ भूल सकते हैं
0: जी, और उसमें जब रियाज, समर्पण और अनुशासन जुड़ जाता है, और कई बरसों की शिक्षा अगर उसमें जुड़ जाती है, तो वो बड़े बड़े पुरस्कारों तक और सम्मानित भी हो जाती है वो व्यक्तित्व, जैसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं रोशन कुमारी जी, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विशेषकर कथक के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं, और उन्हें जयपुर घराने की अग्रणी नृत्यांगना माना गया है। और रोशन कुमारी का जन्म अम्बाला में हुआ था, उनका परिवार कला से गहराई से जुड़ा था, पिता चौधरी फकीर मोहम्मद और वे थे प्रसिद्ध तबला और पखावज के वादक, और उनकी माता जी थी जोहराबाई अम्बाले वाली। 1940 का जो दशक था उस वक्त ये प्रसिद्ध शास्त्रीय और पार्श्व गायिका रही हैं,
1: और उनकी माँ चाहती थी कि वे गायिका बने, लेकिन रोशन का मन नृत्य में लगा रहता था, तो वो अपने पिता के बेहद करीब थी, पिता पखावज बजाते और वो घंटों अपने पैरों में घुंघरू बांधकर रियाज करती। उन्होंने 5 बरस की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था
0: जी, और जो शुरुआती नृत्य शिक्षा जो उन्होंने ली है वो ली है K.S. मोरे जी से। 40-50 के दशक में फिल्मों में डांस डायरेक्टर थे वे, उनके प्रमुख गुरु सुंदर प्रसाद जी लखनऊ घराने के दिग्गज बिंदादीन महाराज के शिष्य थे, बाद में उन्होंने उस्ताद गुलाम हुसैन खान और गुरु हनुमान प्रसाद जी से जयपुर घराने की नृत्य की बारीकियां सीखी, गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा, वो कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई करती थी,
1: और उन्हें हमारे देश के और विदेश के नेताओं के सामने भी नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला। 1971 में उन्होंने मुंबई में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की, इस नृत्य संस्था से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार किए, उनकी प्रमुख शिष्याओं में मुक्ता जोशी, अदिति भागवत, नंदिता पुरी, अनुना गुहा, ये बहुत सारे नाम शामिल हैं
0: जी। और रोशन कुमारी ने फिल्मों में भी कथक को जीवित रखा, एक अभिनेत्री के रूप में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता, फिर सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब, बसंत बहार जो बंगाली फिल्म बनी थी उसमें, और सत्यजीत रे की जलसागर।
1: और उनके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन और नृत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया। 1963 में उन्हें मिला नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में नृत्य विलास सम्मान उन्हें मिला, 1984 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, 2005 में अखिल भारतीय भूलिका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया
0: जी। और रोशन कुमारी की नृत्य शैली की यह विशेषता थी कि इसमें

0: जयपुर घराने की तेज लयकारी, चक्कर पखवाज की थाप के साथ भरतनाट्यम जैसे अभिनय की गहराई का संगम, ये दोनों दिखते हैं। उस दौर में उनका कृष्ण लीला पर नृत्य करना लोगों को अटपटा सा लगता था ममता जी, लेकिन उसके बावजूद तब उनके पिता ने हर रूढ़ी को तोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया।
1: और उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि कला में पहचान केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, प्रतिभा को साधना, अनुशासन और समर्पण से निखारना पड़ता है। जब घुंघरुओं की आवाज के साथ ताल मिलती है, जब एक कदम से लय जन्म लेती है और एक भाव पूरी कहानी कह देता है, तब समझ में आता है कि कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन है। तो ये थी कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में जानकारी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी टिप्पणी में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं जिसमें नृत्य का ही एक स्वरूप देखने को हमें मिलेगा, उसके बाद उनकी टिप्पणियां भी शामिल करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: दीपा जी, ये लेकिन फिल्म का गाना था आशा भोसले की आवाज में और बहुत ही खूबसूरती से हेमा मालिनी नृत्य करती नजर आ रही है। हम बात कर रहे थे नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में, जानकारी दी थी इस गाने से पहले और उन्हीं के बातचीत के बाद खास तौर से हमने ये गाना चुना था। और गुलजार साहब के बोल थे, सत्यशील देश पांडे का इसमें संगीत था और हेमा मालिनी ने ये नृत्य किया। और ये तो सभी को पता ही होगा कि हेमा मालिनी तो नृत्य में कितनी पारंगत हैं और कितने तरह के नृत्य उन्हें आते हैं और कुशलता से पर्दे पर वो दिखाती हैं और अलग से वो क्लासेस भी लेती रही हैं
1: जी।
0: और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल

0: अब हम चलेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर, और एक बात और कहना चाहेंगे बस यहाँ पे कि अगर नृत्य करते रहेंगे तो हमें शायद इस तरह के रोग से मुक्ति बहुत बहुत हमें मिलती रहेगी। फिलहाल ये बात
1: क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है नृत्य से।
0: जी, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य सिद्धांत था फर्स्ट डू नो हार्म, यानी चिकित्सा का पहला नियम है कोई नुकसान न पहुंचाना। और WHO के अनुसार दुनिया में हर 10 में से एक मरीज को स्वास्थ्य सेवा के दौरान किसी न किसी तरीके का जो भी नुकसान होता है उसमें से लगभग 50% नुकसान को रोका जा सकता है। और इस दिन का उद्देश्य है कि रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकारों में डॉक्टर नर्सों और अस्पताल और मरीजों को एक साथ लाना और स्वास्थ्य प्रणाली में गलतियों को कम करना। इस साल यानी 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और स्लोगन दिया है सेफ केयर फॉर लाइफ, यानी जीवन भर के लिए सुरक्षित देखभाल। गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज या सांस फूलने वाले कोई पुराने रोग होते हैं। दुनिया में करीब 74% जो मृत्यु है इन्हीं बीमारियों से होती है।
1: WHO ने इस थीम को इसलिए भी चुना है क्योंकि मरीजों को सालों साल लगातार इलाज, दवाइयां और जांच की जरूरत पड़ती है और बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनमें नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार गलत निदान या फिर देर से निदान होना, इलाज करवाना, और दवाइयों में कई बार चूक हो जाती है, अस्पताल में जो संक्रमण की संभावना होती है वो बढ़ जाती है, कई बीमारियां एक साथ होने से आज में दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं।
0: जी,
1: तो इस वर्ष आज के दिन के मुख्य लक्ष्य को रखा गया है कि मरीजों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि साझेदार बनाना है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा में हिस्सा ले सकें। और सरकार भी स्वास्थ्य नीतियों में रोगी सुरक्षा के तहत शामिल किया है अपनी नीतियों को, और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निदान और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है, ये आज इसका उद्देश्य है।
0: जी, और देश में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये भी जरूरी है कि डॉक्टर का पर्चा साफ साफ समझना सीखना चाहिए, दवा का नाम, खुराक, एक्सपायरी ये सब देखना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी बीमारी का पूरा इतिहास डॉक्टर को बताना जरूरी है, तभी सही इलाज संभव है। और इलाज के बाद फॉलोअप को कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ममता जी सिर्फ डॉक्टरों का दिन नहीं है बल्कि ये सब हम सबका दिन है, क्योंकि सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली तभी बनेगी जब मरीज जागरूक होंगे और स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थ होंगे।
1: बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और जोड़ना है कि फॉलोअप के लिए तो सजगता जरूरी है ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कई बार एक बार आपकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और उसको आपने रख लिया, प्रिजर्व कर लिया अपने पास, और जब वापस मान लीजिए खांसी, बुखार और ये सब सिम्टम हो रहा है, वही दवा आप रिपीट कर लेते हैं। जरा सोचिए कि साल भर पहले जो बीमारी जिस वजह से आपको फीवर बुखार आया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी वही कारण हो, कुछ और कारण हो सकता है, उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारियां फैली हुई है वो डेंगू जैसी बीमारी, तो पता चला वही दवा आप रिपीट कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुखार की दवा खाए जा रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, डॉक्टर से संपर्क कर लें पहले। और फिलहाल हम ये गाना सुनवा दें।
0: चलिए सुनते हैं।

0: तो देखिए स्वास्थ्य का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे रामा रामा हम ये गीत के तौर पे गाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत के कारण या किसी और वजह से हम इस तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ये हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। दरअसल अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस इतना ही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से टहलना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, नियमित रूप से कसरत को शामिल कर लीजिए, और राजनृत्य की बातें की थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ आजकल तो इस तरह की एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिसमें नृत्य की भावभंगिमाएं शामिल हैं, जिसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की, पैर की, आंखों की और चेहरे की, बाकायदा ट्रेनर आपको सिखा देते हैं। और एक नया चलन ये भी चला है, हालांकि पुराना है लेकिन आजकल ज्यादा चलन में वो है कि जिम जाना नियमित रूप से, तो आप जिम जाके भी अपने को फिट फट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हम एक संदेश सुनवा रहे हैं।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और दीपा जी कहाँ
1: जी,
0: सोशल मीडिया में उलझी हुई है ना?
1: सोशल मीडिया में उलझे नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं के संदेश।
0: तो ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इसी में मिलता है सब।
1: देखिए हर चीज के लिए ममता जी ये बुरा नहीं है, कुछ कुछ काम की बातें भी तो होती है ना। देखिए और अपने जो श्रोताओं से है ये जुड़ने का, बिल्कुल जो सखी सहेली के वक्त जुड़ने का एकदम उस वक्त लगता है कि हम फोन न हटाएं, अपने पास रखें, ज्यादा से ज्यादा संदेश।
0: सोशल मीडिया वाले ज्ञान के कौन कौन से मोती हैं जरा देख लेते हैं हम भी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ये हमें लोगों से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान का अवसर देता है, लेकिन इसके कारण हमारे व्यवहार में भी बदलाव आया है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग संयम, शिष्टाचार और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, अफवाह या गलत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सही संतुलन के साथ सोशल मीडिया हमारे ज्ञान, संवाद और सकारात्मक सोच का माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए कि बदला तो है, दिनचर्या देखिए बदली तो है, कि हमारी सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं होती, हम मोबाइल की स्क्रीन से भी होती है। और आंख खुलते ही फोन देखना, संदेश पढ़ना, सोशल मीडिया पे आए नए पोस्ट देखना और फिर दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में फोन की तरफ लौटना, जैसे हमारी ये जिंदगी की रोजमर्रा की आदत नहीं बन गई, आपको नहीं लगता ममता जी?
0: बिल्कुल लगता है। एक और बदलाव हमारे व्यवहार में आ चुका है कि किसी ने अपनी पोस्ट डाली है तो ये देखना कि वो लाइक मिले कि नहीं
1: जी,
0: कमेंट लिखे कि नहीं लिखे। आमने सामने शायद हम जिस बात को बड़ी ही शालीनता से कहें, वही स्क्रीन के पीछे बैठकर बहुत ही कठोर शब्दों में कह जाते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हम जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं तो कई बार बहुत सरलता से कोई बात लिखी जाती है, लेकिन पता चलता है कि उस बात का गलत मतलब निकाल लिया गया
1: और फिर उस पर बड़ी लंबी सी बातचीत होने लग जाती है। कोई एक सोशल मीडिया का फ्रेंड कुछ एक बात लिखता है, उस पर फिर जवाब आते हैं और वो बात बहुत लंबे आगे तक खींच के चली जाती है। लेकिन पहले देखिए ये है कि क्या हम सोशल मीडिया पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों, ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगा है?
0: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि हम फोन उठाते हैं, सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखेंगे
1: जी।
0: ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी ओर से बोल रही हूँ।
1: चलिए किसी के भी ओर से हो, भाई एक बात उठना चाहिए।
0: हम तो श्रोताओं की ओर से भी ये बात कह रहे हैं
1: जी।
0: क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि सभी की ये लत है कि फोन उठाया और एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा, जिससे दूसरा, फिर तीसरा।

0: चौथा, और अगर मोबाइल की गैलरी में चले गए तब तो तस्वीरें, तस्वीरों से जुड़ी हुई बातें, जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गया। लेकिन हम ख्याल रखते हैं क्योंकि हमें तो बिल्कुल समय के हिसाब से चलना होता है और समय का मिलान करते हैं हमारे श्रोता। लेकिन श्रोता बताएं कि वो कितना ख्याल रखते हैं, क्या वो कभी ऐसा करते हैं कि 5 मिनट के लिए बैठे और आधे घंटे बीत गए और कहीं जाना था और बैठे रह गए कि पता चला घर में बहन, पत्नी या माँ ने कहा कि जरा सब्जी दूध ले आना और आप मोबाइल के स्क्रीन पे ही बैठे रह गए। या फिर उल्टा भी कर लीजिए इसको कि पति ने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा या कोई और काम आपस में बंटवारा हुआ कि हम ये करना और बैठे रह गए। तो ये कोई एक वर्ग नहीं है, ये बच्चे, बुजुर्ग, घर में पति पत्नी, भाई बहन, सब लोग इसी में लगे हुए,
1: सब शामिल है। और देखिए ना, ये चमकती सी जो दुनिया है इसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको भी जवाब दे दे, हम इन्हें भी जवाब दे दे, अरे हमारे इस मित्र का ये संदेश आया था हम उसे भी जवाब दे दे, या हमने जो डाला था पोस्ट उस पे कितने लाइक्स आए वो देख लें, और अब बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए हैं तो उसका जवाब अभी के अभी देना बहुत जरूरी है, फिर झगड़े हो जाते हैं।
0: और अभी आप जब सोशल मीडिया पे देख रही थी संदेश, तो मैंने 2-3 बार आपको आवाज दी है बैठे बैठे, तो आप डूबी हुई थी, लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है कि श्रोताओं की टिप्पणियों में आप डूबी हुई थी।
1: जी बिल्कुल, उसमें डूबे हुए थे।
0: कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सोशल मीडिया में आप उलझ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है उसमें बहुत कुछ है, आपके मोबाइल के यंत्र में, कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत कुछ है, जानकारियां भी बहुत सारी, किताबें हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, कहानी कविताएं भी पढ़ सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन सिर्फ बैठ के एक दूसरे को जवाब देते रहे, चैट करते रहे, हंसते रहे, इमोजी भेजते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। कई बार आप ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम भूल जाते हैं। आपको बताऊं दीपा जी कि अभी कल ही एक जो फिल्म है हनुमान अंश, उसके उस फिल्म के डायरेक्टर आए थे और विशाल चतुर्वेदी
1: जी,
0: तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि वो कागज और कलम से लिखते हैं, तो मैंने ये सवाल पूछा कि आज डिजिटल युग में आप कागज कलम से ये इतनी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली, ऐसा उनके बारे में सुना था
1: जी।
0: तो उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ ये कि मोबाइल साथ में रहता था और कंप्यूटर साथ में है, तो कितना भी हम मोबाइल को म्यूट कर लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे स्क्रीन पर कुछ न कुछ चमकता रहता है, कोई न कोई संदेश, फिर लगता है कि ये जरूरी तो नहीं होगा मोबाइल उठा के देखते रहना। तो मैंने क्या किया, मतलब ये उन्होंने कहा विशाल जी ने, कि मैंने क्या किया कि मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके पैक करके रख दिया, और एक हमारा हमारे स्टूडियो में गुफानुमा एक बना हुआ है कमरा जैसा, वहां पे मैं चला गया और कागज कलम लेके, तो 15 दिन तक मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा और 15 दिन तक मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, मतलब मोबाइल से
1: जी।
0: तो ये बड़ी अचरज की बात है आज के युग में, आप 15 दिन तक, लोग 15 घंटे नहीं रह सकते, मुझे तो लगता है 15 मिनट भी नहीं रह सकते बिना मोबाइल के।
1: बिल्कुल, और आज के युग में अगर 15 दिन तक कोई दिखे नहीं, अगर कोई जैसे ये मीडिया से जुड़े कोई व्यक्तित्व है, अगर वो ना दिखाई दे और कुछ जवाब ना दे या कुछ प्रतिक्रिया ना दे, तो ऐसा लगता है इन्हें क्या हो गया या क्या बात है भाई, या तो ऐसा लगने लग जाता है अहंकार तो नहीं आ गया, या यूं लगता है हमसे नाराजगी तो नहीं है, और फिर वो पर्सनल मैसेज पे जाकर ऐसा क्यों ऐसा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कई बार कुछ अच्छी सी पोस्ट लिखते हैं ना, तो या उन्हें लगता है हमने बहुत अच्छी सी बात लिखी है तो
0: जवाब नहीं दिया,
1: जवाब नहीं दिया, मैसेज पर्सनल डालते हैं कि जवाब नहीं दिया, उस पे जवाब दो, देखो हमें ना कोई फला, मतलब किसी तीसरे को हमें कुछ ये बताना है या सुनाना है, इसलिए तुम यहाँ पर जवाब दो, तो इस तरह की भी बातें होने लग जाती
0: है। और तो और फेसबुक पर और इंस्टा पर कुछ लोग पोस्ट डालते हैं और टैग कर देते हैं, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर पर्सनल मैसेज भेजते हैं कि अरे मैंने तो ये लिखा, अच्छा उसका फिर लिंक भेजते हैं, लिंक पर भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखा तो फोन करते हैं, मैंने ये पोस्ट डाली थी आपने तो देखी ही नहीं,
1: तो इस तरह के व्यवहारों में हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। अभी हम क्या देखें या सुने,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ओरे ताल मिले नदी के जल में, अब आजकल तो शब्द मिले भाषा, भाषा मिले जाके मोबाइल के स्क्रीन पर, यही हाल हो रहा है। और हम बात कर रहे थे यही
1: जी,
0: मतलब सोशल मीडिया,
1: सोशल मीडिया तो ये इस्तेमाल करने के वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ममता जी। जैसे कि दूसरी तरफ भी एक इंसान ही बैठा हुआ है, तो उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनाएं भी हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, या उन्होंने क्या किस तात्पर्य में ये बात कही है, ये भी हमें समझ के ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देनी चाहिए।
0: दीपा जी, हम अभी तक तो सोशल मीडिया की नकारात्मक बातें ही कर रहे थे, कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं
1: जी।
0: कि एक समय था जब ये माध्यम नहीं था, तो बहुत सारी जानकारियों से हम अनभिज्ञ रह जाते थे, पता नहीं होता था। जैसे किसी फिल्म की चर्चा सिर्फ अखबार में हम पढ़ पाते थे। एक समय तो ऐसा था कि रिक्शे पर, आपको याद होगा, वो भोपू लगा के प्रचार होता था रिक्शे पर बैठ के, फिर अखबार में आने लगा, तो हम अखबार के पन्ने पे ढूंढते थे कि कौन सी फिल्म लगी है कहाँ पर, किस टॉकीज में
1: जी।
0: फिर अब इतना आसान हो गया है कि आपको फिल्मों की जानकारी मिल जाती है, थिएटर नाटकों की जानकारी मिल जाती है, किताबें जो आती हैं, हम पहले किताबें सिर्फ नाम से ही जानते थे कि फला साहित्यकार, फला लेखक, कवि, उनकी कोई किताब आई है, तो जब हम प्रकाशक से जुड़े होते थे तो हम वो किताबें मंगवा लेते थे
1: जी।
0: तो या फिर अखबार या पत्रिकाओं में उनका नाम, मतलब जो नए लेखक, उभरते हुए लेखक होते थे अनजान, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम नवोदित कवियों को, नवोदित लेखकों को जान पाते हैं, उनकी किताबों की जानकारी मिलती है और उनकी किताबों की चर्चा होती है
1: जी।
0: और ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है जहाँ पर किताबों के बारे में चर्चा हो जाती है, फिल्मों के बारे में लोग चर्चाएं कर लेते हैं, और बहुत सारे माध्यम विज्ञान है, मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है। लेकिन उसके एवज में इतना सारा वक्त खा लेता है सोशल मीडिया, वो बहुत दुखद है।
1: वो हमें हमेशा एक अपने आप पर ही ये यूं कहना चाहिए कि थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण चाहिए कि हमें कितनी देर बैठना है। अगर या तो समय हम इसके नियंत्रण करने कि हाँ भाई आज हम आधा घंटा का वक्त है या एक घंटे का वक्त है या दोपहर

0: घर में आराम का वक्त है खासतौर पर महिलाओं के लिए, या जब सारे घर का काम हो जाता है, या आपका दफ्तर से अगर लौट रहे हैं या व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है आपने थोड़ी सी देर आधा घंटा देख लिया वहां तक ठीक है, लेकिन हम उसी में डूबे रहे ऐसा ना हो। ज्ञान भी बेशक ये अच्छी बात है कि आज हमारे हाथों में ही है, हम चाहें जितना ज्ञान बटोर सकते हैं और चाहें तो वो कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर रहता है।
1: गानों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है इंस्टाग्राम पर, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है इंस्टाग्राम पर रीलें बनने लगती है, तो बहुत सारे गाने नए गाने हम नहीं जान पाते हैं, तो वो देख के भी पता चल जाता है। एक तो माध्यम है रेडियो और विविध भारती से तो हर तरह के गाने प्रसारित ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया से भी मिल जाती है।
0: जी, ये एक संदेश आया है ममता जी, कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा सोशल मीडिया पर शिष्ट, जिम्मेदार और सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी खबर या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लेनी चाहिए, ताकि हम गलत जानकारी ना फैला सकें। और साथ में ये भी लिखते हैं कि हमेशा ये अपमानजनक बात या कुछ ऐसी पोस्ट जिसमें एक घृणा बढ़े, इस तरह की बात बिल्कुल ना करें, या किसी की व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें या वीडियो उसके अनुमति के बिना हमें साझा नहीं करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से भी बचना चाहिए, और इसे अपने वास्तविक जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
1: बिल्कुल, कई बार लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और किसी की तस्वीर लेकर अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते हैं, तो आप देखो तो पता चलता है कि, और उसे जब भी कोई संदेश कहीं भेजा तो पता चला कि तस्वीर तो आपकी है और वो व्यक्ति कोई अनजान है, तो ये भी गलत है। ये सब गलत आदतें हैं और इनसे बचना चाहिए। और जिंदगी उन पलों का नाम नहीं जिन्हें हम सिर्फ कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिंदगी तो उन पलों का भी नाम है जिन्हें हम बिना कैमरे के, बिना पोस्ट किए, बिना लाइक किए, उम्मीद के जीते रहते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आपके घर की हर बात सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाए, कुछ बातें निजी भी रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और एक संदेश ये कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया आज के युग में कई फायदे हमें दे रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजनेस हो या प्रसारण, परंतु कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि हर अच्छी चीज को बुराई में परिवर्तित कर देते हैं, ये उन्हें गलत लगता है। एक और संदेश ये कहता है कि सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक मंच, इस मंच का उपयोग करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जो हर वक्त एक उपभोक्ता की फर्ज बनता है कि इस मंच पर ऐसी कोई पोस्ट न डालें जो समाज के लिए हानिकारक हो, 100 बार सोच विचार कर सत्यता की जांच के बाद ही हमें पोस्ट करना चाहिए।
1: एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस थोड़ा देखते हैं और इतनी देर तक उसमें सोशल मीडिया में खो जाते हैं, पर लाइक नहीं देखते, बस कुछ अच्छी बातें ही देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर सोशल मीडिया के साथ तो उसकी व्यवहार कुशलता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम अपने हिडन आई की निगाह में काम कर रहे होते हैं जिसे हम नहीं जानते, यही नहीं बल्कि हमारा व्यवहार भी छुप जाता है कि हम क्या कर रहे हैं।
0: एक चीज और थी जो कि हमें अब जरूर बात करनी चाहिए, जैसे हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि जो इंग्लिश में लिख दिया जाता है ना, गोइंग फॉर अ वेकेशन, और हम उसमें तारीखें भी डाल देते हैं ममता जी कि हम इतने दिन से इतने दिन तक कहीं हम बाहर जा रहे हैं। अब अगर किसी का ध्येय ही कुछ अलग है, गलत है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप इतने तारीख से इतने तारीख तक घर में नहीं है, तो शायद आपके अनुपस्थिति का वो
1: सुरक्षा की दृष्टि
0: से, सुरक्षा की दृष्टि से
1: ये
0: ठीक नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने तारीख को जा रहे हैं, इस तरह की बात हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ बिल्कुल अनजान। हमारी एक छोटी सी टिप्पणी, एक प्यारा सा शब्द, किसी का हौसला बढ़ाती बात उसके दिन को खूबसूरत बना सकती है। इसलिए यहाँ भी कोशिश करें कि हमारे शब्दों में सम्मान हो, बातों में मिठास हो और दिल में किसी के लिए बुरे भाव ना हो। बिल्कुल सही बात है कि ये जरूर है कि कोई उदास है, दुखी है, तो आपकी एक टिप्पणी, आपका एक संदेश उसके दिल को, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होठों पर ला सकता है।
0: जी, और एक हमारी सखी लिख रही हैं कि ये वरदान तो बन सकता है, लेकिन इसका जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल शायद हमें ये मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी के हिसाब से भारी हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
1: जी, और अब एक सुनते हैं गाना। जी,

0: देखिए, त्योहारों का जो वक्त ये चल रहा है इन दिनों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। और ये लोगों ने कई सारे संदेश भी भेजे हैं ममता जी। ये पहला संदेश कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल गणेश उत्सव हर गांव हर शहर में मनाया जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति पीओपी के बजाय मिट्टी से बननी चाहिए। विसर्जन के वक्त नदी तालाब जैसे खुले जल स्रोत की बजाय घर के बनाए कृत्रिम कुंड या टंकी में करें। होली के दिनों में रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक हर्बल रंगों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिवाली पर बहुत प्रदूषण वाले फैलाने वाले पटाखे से बचना चाहिए। रोशनी के लिए तेल के दिए या मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने ये बात लिखी है कि हम में से कितनों को ध्यान रहता है कि पूजा पंडाल में मिलने वाला प्लास्टिक का प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट में प्रसाद हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है। एक एक प्लेट करके कितने लाख प्लेट हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया है किसी ने? होली के एक दिन पहले पेड़ों को काटकर अग्निदाह करना कितना उचित है? गणेश जी के आगमन के बाद और दुर्गा उत्सव में कितने पंडाल में मिट्टी की मूर्ति बैठी है, इसका तो अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। काश इंसान सोच पाते, जब एक पेड़ कटता है तब सिर्फ एक लकड़ी का लट्ठा नहीं गिरता, तब छिन जाता है पक्षियों से उनके घोंसले और हरे पत्ते की ताजगी भी। कहा जाता है कि हमें तो याद है कि बचपन में नानी दादी कहती थी कि जो पेड़ कटता है तो पेड़ कटते वक्त छाल से जो लिक्विड निकलता है ना, रसायन निकलता है, जिसको कि बचपन में इसी नानी दादी यही भाषा बोलती थी, वो देखो दूध निकल रहा है, ये दूध नहीं उसके आंसू हैं, पेड़ के आंसू
0: जी।
1: तो ये अब कहां तक ये ठीक है, एक मिथ के रूप में हम मानते हैं जो भी वैज्ञानिक कारण है, लेकिन पेड़ को जब काटते हुए हम देखते हैं तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और ये संदेश कहता है कि हमें पटाखों प्लास्टिक और अत्यधिक कचरे से बचते हुए प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए। स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए त्योहारों को पर्यावरण से रक्षित इस तरह से बनाया जाए।

0: और हमारी खुशियों को और सार्थक इसी तरह से बन सकते हैं। एक और संदेश कह रहा है कि आजकल घरों पंडालों में प्लास्टिक के फूल और तरह तरह के सजावट के सामानों से अपने घर की और पूजा पंडालों की सजावट हम करते हैं और यह कचरा पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा है कि सजावट भी आप प्राकृतिक फूलों से करें, प्राकृतिक चीज़ों से करें, जैसे कि आम के या अशोक के पत्ते, प्राकृतिक बंधनवार, वो ही उसका ही इस्तेमाल करें और लाइटों की जगह छोटी छोटी मोमबत्तियाँ और दियो से हम घर को सजा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और जो पूजा सामग्री होती है फूल माला जैसी जैविक सामग्री से खाद बनाई जा सकती है और बाकी सामग्री को अलग करके उचित तरीके से उसे निस्तारित कर लें। त्योहारों में जो कचरा होता है उसे कम करें और खुशी का मंत्र ज्यादा अपनाएं तो ये आपके लिए त्योहार उत्सव बना रहेगा, वरना फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुख देने लगेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: और अब बोलिए कि हमारे श्रोताओं को क्या खुशी दे सकता है
0: एक गीत।
2: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।

0: बड़े गजब की बात।
1: ममता जी देखिए, सोशल मीडिया का एक फायदा भी है, हम यहाँ पर बातें करते हैं और तुरंत हमारे जो श्रोता हैं
2: प्रतिक्रिया
1: देते हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भी पेड़ों को काटना बहुत

0: सकरिका नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाणा महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए। और बुल्ढाणा कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाणा विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाणा जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गाँव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: ये हमारा खेड़ेगा है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं हम। साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, बारिश फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं, तो अभी बाग बाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग में लगाते मैडम हम, यही पारंपरिक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरा भरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है? हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?
1: दो दो फसल आ जाती है हर साल, गेहूं भी आता है और पहले सोयाबीन भी आती है।
0: जी जी,
1: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक।
0: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपका?
1: ट्यूबवेल है, गर्म कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो

0: हमसे बढ़कर कौन था? देवा हो देवा गणपति देवा।
1: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आसपास?
0: आते, आते।
1: अच्छा,
0: नहीं आते, हमारे गांव में घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
1: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूं मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था।
1: आज नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगाए और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना वो हमारे अशोकनगर में लगता है जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बढ़ एक लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोकनगर एमपी में लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं?
1: हाँ जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
0: तो टिक्की चाट
1: बचपन किया
0: था। हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है मैम। ऐसे जब साथ में खाते हैं ना तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परभनी से। सतीश सावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम पांडुरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच कटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है? अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
1: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा।
1: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन किया।
1: पापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी।
1: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही है आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए।
1: बारिश तो नहीं गई गई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। आदाब मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नहीं है मलिक, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेल्थ फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंटर कश्मीर श्रीनगर से मुलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
0: जी,
1: और बड़गाम अच्छा। बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहती है। जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सिटी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं।
1: इसके अलावा क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया, तो बहुत अच्छा। हमारे

0: बिल्कुल, सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं
1: जी। और दूसरी बात ये कि आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी।
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
0: बचपन में हमने खेला है, तो दो चार बार हमने खेला है।
1: बारिश हो रही
0: थी, बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है, और उस पर पिच लगाना बहुत आसान होते हैं। फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बचपन में क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंकते
1: हैं,
0: बहुत ज्यादा होती है।
1: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ बना के दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, दो चार बार मैंने देखा है।
1: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले जाए ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम। उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, यानी कि बोले पंचीश्वर में गाते हैं, बावरे गुनगुनाते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं डिस्ट्रिक्ट चराइडे सोनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चराइडे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए आप जहाँ से बोल रहे हैं।

0: हाँ जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
1: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
0: हाँ हाँ मैं चाय पत्ती का, पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, फिर इसको प्रोसेस रहता है मैम चाय पत्ती बनाने का,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें मशीन में डाला जाता है, फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है।
1: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं, और
0: जी जी मैम
1: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
0: यहाँ तो बिहू, हाँ मैम बिहू, बिहू तो यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
1: जी तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
0: मैम यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
1: जी जी तो अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही।
1: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन

0: वादियां मतलब कैसी हैं वहां पर, क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
1: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है, तो
0: जी, अच्छा
1: पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
0: बहुत बढ़िया। तो आप वहां के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
1: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है, और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
0: अच्छा
1: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
0: जी,
1: लेकिन
0: तो
1: आनंद भी बहुत आता है। जी
0: छाया दिखती होगी, और वो जो एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन पता चला कि वहां
1: जी
0: से एक रास्ता खुल जाता है। तो
1: जी
0: जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं।
1: जी
0: एक वहां सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
1: बहुत
0: जंगल?
1: दूर है हमारे यहाँ से। हाँ
0: अच्छा, सतपुड़ा के घने
1: जी
0: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है, जो बिल्कुल
1: जी
0: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये
1: जी
0: कविता?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं, और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
0: आगे की पंक्तियां कुछ
1: जी
0: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
1: नहीं
0: ऊंचे,
1: वैसे तो याद
0: इस
1: नहीं
0: तरह से
1: होगी।
0: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, काश
1: जी
0: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
1: बिल्कुल
0: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में
1: बिल्कुल
0: बताना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना?
1: जी।
0: एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
1: देखिए जंगल तो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है, और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके, और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
0: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप
1: बिल्कुल
0: दादा
1: बिल्कुल
0: ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए हैं, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना?
1: बचपन बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे,
0: जी
1: और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं लगभग 20 से 25 साल के।
0: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
1: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
0: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहां पर?
1: अभी तो धान बहुत आयात है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
0: बिल्कुल। और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट
1: जी जी
0: और मिठास होती है उनमें। कौन कौन
1: जी
0: से चावल पैदा होते हैं?
1: बासमती ये जो मिठास की आप बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
0: जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
0: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी
0: कौन बोल रही।
1: बहुत नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ
0: जी, बताइए नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना।
1: जी जी जी जी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से
0: जी।
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर है तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे।
1: जी, हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी,
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी,
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ।
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है, इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए।

0: कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है? मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जी, जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या
1: ये
0: बात है,
1: सिंथिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दशाश्वमेध घाट पर हमारे कर्मदेव आरती कर्मदेव होता है 7 बजे से।
0: हाँ
1: आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और देखने के लिए तो हम लोग जगह करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं। आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कहना, हमने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से।
0: हाँ
1: तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए, और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर त्योहार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गए, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।

0: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है। अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे?
1: जी बनारस के, तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी की, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो और पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ,
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां हैं, जैसे कि कचौड़ी गली में है, हाँ। और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में, जैसे एक अजीब समाहक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
0: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: जी जी जी
0: याद है तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते,
1: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है, तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली, हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाऊ जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कल कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय संकट मोचन का भगवान श्री राम जी का, जो भी है सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन पाता,
0: नहीं मिल पाता वो स्वाद नहीं मिल पाता, और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है, तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है। और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
0: जी जी
1: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है
0: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल चित्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। लोग हारमोनियम बजाकर ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं भजन गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात है।
1: जी, हमारे गुरुजी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है। किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर, जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन। और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी

0: अरे तारे तू जी ममता जी
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो अब
0: जी बिल्कुल
1: कौन सा
0: और बताना चाहूंगा मैं, उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे विराम, आपको सुनवा रहे हैं।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466 2। मुंबई का एसटीडी कोड है 0222 और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का एसटीडी कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, सोच रही थी कि उसके आने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी। एक रेगिस्तान जैसी, बेरंग, खामोश और खाली। लेकिन जब से वो आया, मेरे खामोश दिल में जैसे किसी ने सितार छेड़ दिया। वो जो उदासी के बादल थे, वो छट गए हैं अब। अब जब तुम मेरे साथ हो, जिंदगी में बाहर ही बाहर है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए शाम के समय समुद्र की उस सुगंध की तरह है जो एक शांत खिड़की से अंदर आती है।

यूं तो जिंदगी को परिभाषित करना मुहाल है, पर मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। कहीं रंगीन सा ख्वाब है तो कहीं कभी ना खत्म होने वाली एक रूमानी यात्रा। हाँ, जो तुमसे शुरू हुई है और तुम्हीं पर आकर खत्म।

जो तुमसे शुरू हुई है और तुम्हीं पर आकर खत्म। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी भावनाओं को महसूस करने के लिए एक अतिरिक्त दिल की जरूरत है।

इस रूमानी सफर का हर मोड़, हर नजारा अब सिर्फ तुम्हारे होने से हसीन है। सिर्फ तुम और मैं और हमारी ये हसीन यात्रा। कहते हैं हम सफर प्यारा हो तो सफर का मजा मंजिल पाने से ज्यादा होता है, और हसीन सफर का हर पल इबादत बन जाता है। मैं तुमसे उसी तरह प्यार करती हूँ जिस तरह मैं चांद से प्यार करती हूँ जिसकी आत्मा से प्रकाश निकलता है।

शायरी गीत के सफर में आप हैं मंदाकिनी के साथ। इस हसीन यात्रा के साक्षी हैं ये गगनचुंबी देवदार के पेड़, जो मानो हवाओं के साथ लहराकर अपनी खुशी बयां कर रहे हों। हवाओं का ये शोर और पक्षियों का ये कलरव, आहा हा हा हा। देवदार, हवाएं, पक्षी और वो चांद, ये सभी इस यात्रा के हमसफर हैं। कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में ये सफर हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को छू रहा है। पता है ना, इसी तरह आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं।

शायद तुम अनजान हो, पर मैं हर रात शाम की तन्हाई में भोर की पहली किरण में तुम्हारा नाम गुनगुनाती हूँ। हाँ, गुनगुनाती हूँ। मैंने अपनी बंद आँखों से तुम्हें महसूस किया है। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी उल्फत की यह कशिश कभी महसूस

हमें रिश्तों की नुमाइश नहीं चाहिए थी, वो जुड़ाव चाहिए था जो भीतर तक ठहर जाए। मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारी भुजाओं की चौड़ाई नहीं नापी, तुम्हारे भीतर की कोमलता को महसूस किया, संवेदनशीलता देखी, तुम्हारे मौन को सुना, और हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को खुरच खुरच कर देखा, है ना? भीतर से निकली मिट्टी को जांचा है हमने, परखा है हमने, तब जाकर एक दूसरे को चुना है हमने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर

0: इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi, New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
0: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है।

0: भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् भारतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकी तन्त्रं तीव्रगत्या प्रसरति, यच्च नवाचाराय, निवेशाय, विकासाय च नूतनान् अवसरान् उद्घाटयति।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्रीमोदी न्यरूपयत् यत् एकत्र भारतस्य अर्थव्यवस्था संवर्धते, अपरत्र च भारतमालक्ष्य वैश्विक विश्वासोऽपि दृढीभवति। तेन प्रतिपादितं यत् समवान पूर्णायां वैश्विक परिस्थितौ अपि भारतेन 7.8% वृद्धिमानाङ्कः पञ्जीकृतः। अस्मिन्नेव काले जापान देशस्य ऋणमूल्याङ्कन संस्थया भारतस्य सार्वभौम ऋण श्रेणी समुन्नयिता। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् देशस्य प्रत्येकम् अपि नागरिकः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पबद्धतया कार्यं करोति।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत् यत् क्षेत्रे अस्मिन् आधारशिला स्थापिता अस्ति, अग्रे च सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः माध्यमेन उद्योग निर्माणं भविष्यति। या षट्सु प्रमुख स्तंभेषु आधारिता अस्ति। एतेषु स्तंभेषु अर्धचालक अभिकल्पना यंत्राणि, स्मृति घटकाः, सिलिकॉन तत्त्वं, मिश्रित तार्किक निर्माण घटकाः, अनुसंधान विकासश्च अन्तर्भवन्ति। मन्त्रिणा विज्ञापितं यत् सर्वकारेण भारते अर्धचालक आवश्यकतानां संपूर्ण क्षेत्रे चिप अभिकल्पनायै न्यूनातिन्यूनं 200 नूतन उद्यमान संस्थाश्च समुपकर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्। अत्रावधेयं यत् भारतस्य अभिकल्पना सामर्थ्यं विश्वविश्रुतमस्ति, अतः सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः अन्तर्गतं अर्धचालक अभिकल्पना संस्थानां संवर्धनमेव प्रमुखं लक्ष्यं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतावद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने तस्य जन्मदिवसे हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयताम्। सामाजिक संचारपटले सन्देशं प्रेषयन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः, विगतेषु 25 वर्षेषु श्रीमोदिनः अनुकरणीयां लोकसेवां, राष्ट्रनिर्माणाय च तस्य अभूतपूर्वं योगदानं प्राशंसयत्। उपराष्ट्रपतिना न्यरूपयत् यत् श्रीमोदिनः दूरदृष्टि सम्पन्ने नेतृत्वे भारतं विश्वस्मिन् हि विश्वे एकं प्रकाशमानकेन्द्रत्वेन विभाति, अथ च विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानासु प्रमुखार्थव्यवस्थासु अन्यतमं वर्तते। अपरत्र कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी चापि अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं जन्मदिवसस्य शुभाशयान् व्याहरताम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सतत सार्वजनिकजीवनस्य, लोकसेवाव्रतस्य च 25 वर्षीय पूर्णताम् अवबुध्य भारतीय जनता दलस्य मासात्मकं देशव्यापि सेवा संकल्पाभियानम् अद्य प्रभृति अबाधित प्रामाण्येन समालब्धम्। आगामी मासस्य 17 दिनांकं यावत् आनुपूर्विक क्रमेण प्रवर्तयिष्यमाणस्य अस्य अभियानस्य प्रथमः दिवसः सेवा दिवसः इति सम्भाव्यते। यस्य अन्तर्गतं देशस्य समस्त प्रान्तेषु रक्तदान शिविराणि आयोजितानि। नवदिल्ल्यां दल मुख्यालये दलाध्यक्षेण नितिन नबीनेन रक्तदान शिविरस्य उद्घाटनं विहितम्, यत्र तेन सह अन्यैः वरिष्ठ नेतृभिः कार्यकर्ताभिश्च स्वयं अपि

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की

0: वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: शेतकरी बांधवांनो, आपण ऐकत होतात कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव। ही आकाशवाणी मुंबई केंद्राची निर्मिती होती।

0: किसान वाणी हा कार्यक्रम आपण ऐकला आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून.
1: तैयार हो जाइए खेलों के सबसे बड़े रोमांच के लिए. जापान में होने जा रहे हैं 20वें एशियन गेम्स 2026. भारत के जाबाज खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने के इरादे

0: इस मैदान में उतरेंगे। हर मुकाबला, हर जीत, हर पल का रोमांच अब जुड़ेगा आपसे आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी लेकर आया है एशियन गेम्स 2026 का विशेष कवरेज। सुनिए विशेष कार्यक्रम चेयर फॉर भारत 16 और 17 सितंबर को रात 8 बजे से रात 8:30 तक। 18 सितंबर को सुनिए कर्टन रेजर रात 8 बजे और 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे सुनिए डेली हाइलाइट्स कैप्सूल्स। इसके अलावा 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक एफएम रेनबो पर दिन भर अलग अलग समय पर सुनते रहिए पीरियोडिक एफएम अपडेट्स, 5 मिनट ताजा खबरें, भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां और एशियन गेम्स का रोमांच। तो अपने रेडियो की आवाज बढ़ाइए और बनिए भारत की हर जीत के गवाह। एशियन गेम्स 2026 चीयर फॉर भारत सिर्फ आकाशवाणी मुंबई के 107.1 एफएम रेनबो चैनल पर। आकाशवाणी, आपकी आवाज आपके साथ।
1: श्रोते हो, अवश्य ऐका, येत्या रविवारी म्हणजे 20 सप्टेंबरला संध्याकाळी 5:30 युववाणी कार्यक्रमात यूपीएससी सीएससी 2025 या परीक्षेमध्ये AIR 106 आणि यूपीएससी IFOS 2025 या परीक्षेत AIR 62 या क्रमांकाने उत्तीर्ण होणाऱ्या रोहित मालवेकर यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा।
2: आपण ग्रामीण भागामधून आलोय, एक अडथळा न मानता त्याला एक आपण ऑपॉर्च्युनिटी घेतली पाहिजे। तर त्यांनी ह्या यूपीएससी सारख्या एग्जाम कडे पाठ न फिरवता आपण एक ऑप्शन क्रिएट केले पाहिजे।
1: तेव्हा अवश्य ऐका, आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्र निर्मित युववाणी कार्यक्रम 20 सप्टेंबरला संध्याकाळी 5:30 आकाशवाणी महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांवर।
3: रात्रीचे 8:00 थोड्याच वेळात आपण ऐकणार आहोत जपान इथे आयोजित करण्यात आलेल्या 20व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 निमित्त विशेष कार्यक्रम चिअर भारत। हा कार्यक्रम दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होईल, आम्ही सहक्षेपित करू आणि त्यानंतर 8:30 प्रसारित होईल राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र।
4: स्पेशल प्रोग्राम चिअर फॉर भारत।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैच पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेम पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का

0: भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था, और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टार्डम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं। और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटे, जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी, क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी कर रही है राष्ट्रमंडल खेलों में, वो बाहर रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर, गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्वीन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास, और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
0: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया, चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सके। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आईची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स का एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लेमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है, तो लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट्स जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तेजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लेमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहा है।
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट है जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
1: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है

0: डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में, 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप में, तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब

0: की कोशिश करेंगी, साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
1: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाउ से। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
1: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, pretty sure she will be a medal probable in Aichi Nagoya Asian Games।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत ये तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
1: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। वुमेन्स टीम अगर

0: अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है, तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफी सारे जापान में जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू, काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस
0: फिनिश जब हम लोग का हॉकी में वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सके।
2: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से, इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है और शॉर्ट मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उसके पास अनान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है, लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शॉर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
2: चलिए, हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और HS प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेन्स डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और MR अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी है, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
3: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की

0: वी सिंधु और लक्ष्य सेन, हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है। और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जॉली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: सायंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें, किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद में आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजी ने कोया में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था, वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण, तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं, तो मुझे लगता है कि यहां पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहां लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हां, सायंतन, पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत की बात जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले PKL की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है PKL से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का PKL में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सुनील कुमार जो नेतृत्व

0: करना जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है, जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मोना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तो चार महिलाएं वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
0: देखिए अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बैंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह दिया चताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरद कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हाँ क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था, और इस बार भी उम्मीद यही है, टक्कर कहीं देखती है मोना?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है, और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
0: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501

0: पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है और साई ने खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मुना पार्थ सारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद।
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने। इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है।

0: और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर्स तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: The approach in Semicon 2.0
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में ₹3,000 जमा किए जाएंगे।
5: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी

0: को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
2: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
0: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3%

0: की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
3: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
3: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए। इस बार फिल्म है रजिया सुल्तान, आवाज लता मंगेशकर की, और इसे लिखा है जानिसार अख्तर ने।

अभी आपने जगजीत सिंह को फिल्म अर्थ में सुना। कैफे आजमी के लिए इस गीत की धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने उसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है, जब हसरत जफरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए हसरत।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक डुएट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न व इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना। दुनिया

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गाने लिखे।

दोस्तों, हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड

0: वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की तायद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,
1: तेरी

पगला कहीं का, इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: तुम मुझे।
1: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गान।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। आंखों में पलने वाले पहले सपने अक्सर बहुत मासूम होते हैं। उनमें बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियां शामिल होती हैं। कभी कुछ बनने का सपना, कभी दूर कहीं घूम आने की चाह। समय के साथ सपनों का आकार बदलता है, लेकिन उनकी चमक मन में बनी रहती है। कुछ सपने पूरे होकर जीवन को खूबसूरत बना देते हैं, तो कुछ अधूरे रहकर भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

न जाने तुम्हारी आंखों में ऐसा क्या है कि एक बार नजर मिली तो दिल वहीं ठहर गया। अब यौवन भी जैसे तुम्हारे ख्यालों में ही बीत रहा है और दिल हर पल तुम्हें ही पुकार रहा है। तुम्हारी चाहत में ऐसी तड़प है कि चैन भी रूठ गया है। आलम यह है कि अब इस भीड़ में कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि तुमसे नैन जो लड़ गए हैं तो दिल भी बस तुम्हारा हो गया है।

अगर जीवन एक बगिया है तो हमारे रिश्ते उसमें खिलते अलग अलग फूल। कुछ फूल खुशियों की खुशबू देते हैं तो कुछ अनुभवों के रंग भरते हैं। कभी मौसम सुहाना होता है तो कभी आंधियां भी आती हैं, क्योंकि जीवन की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हर मौसम अच्छा हो, बल्कि इसमें है कि हम हर मौसम में खिलना सीखें।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। हर बात पर रूठना, मनाना और छोटी छोटी बातों पर तकरार करना छोड़ दीजिए। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, इसे शिकवों में क्यों गुजारना। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराइए, दिल की बातें कीजिए, कभी प्यार से हाल पूछिए, कभी बिना किसी वजह के अपने होने का एहसास दीजिए। क्यों ना आज तकरार छोड़कर बस प्यार की बातें की जाए।

प्रेम में दो लोग अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, जहां खुशियां और सुकून एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में ना कोई दौलत बड़ी होती है, ना कोई महल, बस साथ और अपनापन ही काफी होता है। हर पल खास लगता है जब उसमें अपने हम सफर का साथ होता है। इसलिए प्रेम की इस खूबसूरत रियासत में प्रेमी खुद को राजा और अपनी प्रेमिका को रानी समझता है।

रात की खामोशी में एक लड़की चांद से पूछती है, आज फिर मेरी आंखों से नींद क्यों रूठ गई? क्या तुमने उसे कहीं छुपा लिया है? चांद भी जैसे उसकी बेचैनी समझकर मुस्कुरा देता है। शायद नींद किसी ने चुराई नहीं, बस किसी की याद ने उसकी पलकों पर डेरा डाल लिया है। और अब चांद से यही सवाल है, बताओ हमारी नींद किसने चुराई?

आज के छाया गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।
1: समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा